कर रोका न जाए, सपनों में तेरा ओ सपनों में तेरा आना जाना, सपनों में तेरा आना जाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना।

ऊंचे ऊंचे पर्वत जब छूमता है अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब छूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब छूमता है अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब छूमता है सागर को। प्यास से कसने को, बाह में बसने को, दिल मेरा ललचाए कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा

0: सर्जेंट?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है? कौन?
0: मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।